0: Bill, when I get back from India, roaming is a nightmare.
1: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
0: Simzy?
1: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
2: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
3: Budget tight. पर ब्रांड का इंपैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com
4: Sounding good throughout the night with the biggest soothers it's your Laika Radio

मन कोए मन्ने सुत होवे मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्सियों पर

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान।

0: आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं अभी कॉल करें 0208-907-2444 आज ही एक्शन लें 0208-907-2444
1: ट्रेवल इन स्टाइल का वादा है कहीं भी घूम कर आइए फ्लाइट्स और हॉलीडेज की बेस्ट प्राइसेस के लिए हमारे पास आइए अपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए नंबर मिलाइए 0208-954-0077 दैट्स 0208-954-0077 आपके मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है
2: ट्रेवल इन स्टाइल दिस ईद स्किप द क्यूज एंड सेव विद अंबाला प्री ऑर्डर बिफोर द 10th ऑफ मे एंड एंजॉय 20% ऑफ योर ऑर्डर यूज कोड अर्ली Eid Saver online or in store from stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
3: The Breakfast Blend. Perfectly brewed by you. Donny Brasco on Leica Radio.
4: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

0: सेट गो माइक्रोवेव फूड कंटेनर,
1: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियाँ लाए,
0: जहाँ जिंदगी वहाँ सेट गो माइक्रोवेव फूड कंटेनर।
2: चावल

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Radio Wally, bringing you the freshest Fry-yay flashbacks. Like a
2: radio. Oh, you want weight loss advice?
3: Weight loss? Actually, what you want to do...
4: I got my weight loss secret from my mother, who got it from her mother's...
5: My tip
6: weight
5: is...
6: Weight loss?
7: Advice.
8: Or you could go to MedExpress. MedExpress. Healthcare without the noise. Go to medexpress.co.uk/weightloss.
9: Ali 60 milligram hard capsules contain orlistat for overweight adults with a BMI of 28 plus. Follow a reduced calorie, low fat diet. Always read the label.
0: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
10: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
10: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
11: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
12: Discover the best of Portugal with a fantastic Lisbon and Porto Twin City Centre break with Skylord. Fly from the UK and spend 3 nights exploring vibrant Lisbon with its historic streets, trams and riverside views. Then travel by train to beautiful Porto for 3 more nights, discovering its famous wine cellars and charming old town. Skylord prices start from just £339 per person. For multi-centre city break packages with a difference, see skylordcruiseandholidays.com.
13: Call 01923883. 3100 Atoll Protected.
14: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
15: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
16: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जेमिन फूड्स
17: जस्ट ऐड हॉट वाटर वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्टी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी शीरा पोहा भाजी वेज बिरयानी दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट
16: जीरो मेस नो स्ट्रेस सेम एथनिक टेस्ट विद जेमिन फूड्स
18: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
19: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस Pure, fresh, full of natural goodness. Everyday dal se lekar wholesome meals tak. Aapke Asian grocery stores par available hai. Al Noor. Taste the difference.
20: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA. Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: पवन की तो आवाज भी गुड़ की तरह गुड़ से भी मीठी है। हर्षदीप कौर, दिस वन फ्रॉम द मूवी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। नवराज हंस ऑन द वोकल्स विद हर, such a beautiful big track, isn't it? Time now though, let's take you out of this world with your Fry-Yay Firecracker.
1: Taking you out of this world with Radio Wally's Fry-Yay Firecracker.
0: Dedicating this one to Sare Papa. Oh, Papa, give a cheer.